तो हम बताएं सुबह से नृत्य करने की इच्छा हो रही है, इतनी याद आ रही है जगन्नाथ जी की कि काश वहाँ होते। अगर जगन्नाथपुरी वाले बनोगे तो भुजा उठा करके खड़े होके नहीं, भुजा उठा

0: श्रोता मित्रों, आप सुन रहे चौगुजराती कार्यक्रम गीत माला 102.8 FM पर या तो www.divasfm.com पर जुदी जुदी फरमाइशों बदी जुदी जुदी बनावे छे अने बदी आपणे पूरी कोशिश करीए छे। एक खास फरमाइश आवेली छे तो चोक्कस वगारजो।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को

श्रोता मित्रों, आप समरिया चौक गुजराती कार्यक्रम गीत माला 102.8 FM पर या तो www.diversefm.com पर खरेखर गीतों गमे ते वगाड़ो, पण गीतों ना जे शब्दों में कोई छे ने

श्रोता मित्रों, आप समरिया चौकू जाती कार्यक्रम गीत माला 102.8 FM पर या तो www.diversefm.com पर गीत माला कार्यक्रम दर गुरुवार अपनी समझ रजूआत करने पूरी कोशिश करे रात ना 8-10 कलाके 102.8 FM ऊपर लूटन दस स्टेप लाउटन रिचिस लेटन बजर डेल्स परी मिल्टन किंग सालोडेव मिल्टन किंग से न्यूपोर्ट पेगनल दाने आ बाजू पाचा आवे तो सीधा बेडफोर्ड वेलिंगटन सिटी हेड हार्टफोर्डशायर बेडफोर्डशायर अने बकिंगम शायर में जहाँ पन हो या तो दुनिया ना कोई पन खुणा में हो अने खास कर यूरोप में हो हलो केम छो बधाई पोर्चुगल लिस्बन में आप हेम केम हसो अने मजा में हसो अने आनंद मानता हसो 28 डिग्री है एवं समाचार मिला है पप्पू भाई आपना तरफ थी अने अहीं लगभग એનું અડધું કહીએ તો એ ચાલે એને લગભગ 20 તો હશે જેમ બરાબર તડકા ચાલુ થઈ ગયા છે આ અઠવાડિયે મને લાગે છે આવતા અઠવાડિયા સુધી બધે આમ આ વાતાવરણ ખૂબ જ સુંદર રહેશે આપ સાંભળ્યા છો ગીતમાળા સવાલ એક આવ્યો છે મને કે મારું ફેવરેટ ગીત કયું છે હા મારા બધા ફેવરેટ હોય છે ઘણા એના કોઈ ખાસ હોય કોઈ હોય તો મને જણાવો ને આવું કરો છો વોટ્સઅપ કરો 0756686863 અને હું આપની માટે વગાડીશ યપ કોશિશ કરીશ

0: छोरी आवे तो तने वात कहूं खानगी।
1: ए, ए जीवना गड़ना सीता फड़ ए मारा धोड़का ना दाढ़म।